नमस्कार, मुझसे 28.93 दशांश मीटर्स यदि की 1314 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी नो आप केंद्र से अत्यारे सवार 58 मिनट अने 19 सेकंड थी। आज रविवार 24 मे 2024 एट्ले ज्येष्ठ दिनांक 3 शक सवन 1948। आज सभा की शुरुआत करिए मंगल स्वर थी।

0: આકાશવાણીનો ભુજ કેન્દ્રનું પ્રસારણ આપ સાંભળી રહ્યા હતા. હવે થોડી ક્ષણોમાં હિન્દીમાં સમાચાર દિલ્હી કેન્દ્રથી રિલે કરીશું.
1: આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં ફહદ નાઝ. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे. विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे. श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी. श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे. प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई. क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी. बैठक में विदेश मंत्री डॉ जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है. नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है.
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं. इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है. हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है. निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है.
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शॉकी से मुलाकात की. श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे. वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है. इस समझौते के लिए नियम और शर्ते इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्ने की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी. श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का रिकॉर्ड दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा. दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं. भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई. रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया. प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया. सरकार ने विकसित भारत जीएमजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं. पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की. राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा. श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है.

0: शूट आणि जाणीचो तो सरकार श्रेणी व्याजबी भाडी दुकान थे अंत्योदय राशन कार्ड धारको आणि अग्रता धरावता कुटुंबाने मेवा प्राप्त अनाज बाबते आणि मध्यान्ह भोजन केंद्रामध्ये प्राथमिक शाळा छोटे चौथ वर्षना बाळकांनी मिळता आहार बाबते संबंधित जिल्ह्याने निवासी अधिक कलेक्टरशी तसेच अंगणवाडी केंद्रामध्ये छ महिना ते छ वर्ष सुधीना बाळकांनी सगर्भा महिलांनी तथा धात्री माताओं मिळता आहार बाबते संबंधित जिल्हा पंचायत न फरियाद निवारण अधिकारीशी फरियाद करी शकाय छे आणि हवे तो माय राशन मोबाईल ऍप द्वारा राशन कार्ड व्यक्ती विविध माहिती तथा मिळवेला अनाजला जत्थोनी रसीद मिळवू शकाय छे तथा फरियाद नोंदवू शकाय छे आणि जो अधिकारीना निर्णय थी संतोष न थाय तो गुजरात राज्य अन्न आयोग गांधीनगर में सीधी अर्जी के अपील करी न्याय मिळवू शकाय छे फोन नंबर 0709-2425-9 गुजरात राज्य अन्न आयोग द्वारा जनहित में प्रसारित
1: आकाशवाणी ने भुज केंद्र पर थी आज सौ भक्ति संगीत नो कार्यक्रम अर्चना हम आज आप मानी रहा था ललिता गोराधरा ने कंठ ने हमें सांभ मन में गढ़वी में स्वर में

अपने बल का आभास देने के लिए रावण की सभा में अंगद ने पृथ्वी पर जो पैर रोका तो मेघनाथ समेत अनेक योद्धाओं ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु उसे हिला तक नहीं सके। ये देख स्वयं रावण उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वो अंगद का पैर पकड़ने लगा, अंगद बोल पड़े, अरे मूर्ख, मेरा चरण पकड़ने में तेरा कल्याण नहीं, जाकर श्री राम के चरण पकड़। पल भर में रावण के दंभपूर्ण मुखमंडल से कांति विलुप्त हो गई। सकुचाकर वो सिंहासन पर वापस जा बैठा। उसका मुख वैसे ही निस्तेज हो गया जैसे सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा का प्रकाश लुप्त हो जाता है। पार्वती को यह वृत्तांत सुनाते हुए शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिन प्रभु के भावों के संकेत मात्र से विश्व की रचना और विनाश होता है, जो एक तिनके को वज्र के समान कठोर और वज्र को तिनके के समान नगण्य बना देते हैं, उनके दूत के प्रण और निश्चय को भला कौन डिगा सकता है। अंगद ने एक बार फिर नीतिपूर्ण वचन कहकर रावण को सद्बुद्धि देनी चाहिए, किंतु उसका कोई प्रभाव न होता देख रणभूमि में उसका वध करने की धमकी देकर श्री राम के शिविर में वापस लौट गए। रात्रि में मंदोदरी ने रावण को फिर समझाने का प्रयास किया। जो श्री राम के छोटे भाई द्वारा खींची गई एक रेखा तक नहीं लांग सका, वो स्वयं जगदीश्वर से किस प्रकार पार पा सकेगा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लिव्या निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री एनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास के सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।

0: आवश्यक रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलिंग प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वार्षिक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष देव शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमान और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा के 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CETA पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के नाम और शर्ते इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्ने की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कनाडाई डॉलर तक पहुंचाना है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामले से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जनसूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दावा किया। सरकार ने विकसित भारत GRANGE अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम भी घोषित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में यह घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र की नासिक अदालत ने विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपी नितिन पटेल, विजय खान, दानिश शेख और तौसीफ उतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Anuja Kumar. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with the U.S. Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues, including regional and global peace and security. U.S. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting. He called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defense, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Modi asserted that India and the United States will continue to work closely for the global good. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts in West Asia through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio shared U.S. perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. He called India a vital partner to the United States. The government has published draft rules under the Viksit Bharat GRANGE Act 2025 for wider public consultation. The Rural Development Ministry said that any person, stakeholder, organization or institution may submit objections or suggestions on the draft rules for consideration by the 21st of next month. The Ayushman Bharat scheme will start investment gold from July this year. Chief Minister Shubhendu Adhikari announced this in Kolkata after a virtual meeting with Union Health Minister J.P. Nadda yesterday. The existing beneficiaries under the state health scheme, Swasthya Sathi, will be incorporated into the Ayushman Bharat scheme. The memorandum of understanding in connection with the Ayushman Bharat Arogya Mandir will be signed in June in New Delhi. Mr. Adhikari said that a proposal has been sent to the centre regarding an increase in the number of PM Jan Aushadhi Kendras in West Bengal from the existing 117 to 469. The Chief Minister also said that proposals for new medical colleges in Alipurduar, Kalimpong and South Dinajpur districts as well as a new AIIMS for North Bengal have also been sent to the central government. In Maharashtra, a 1,500-page charge sheet has been filed before the court at Nashik in connection with the alleged sexual assault and attempted religious conversion case linked to a TCS facility in the city. According to an SIT chief, Sandeep Mitke, the charge sheet was filed yesterday against four accused, Martin Patel, Nida Khan, Danish Sheikh and Tosif Attar. He said additional charge sheets related to 7 to 8 persons connected to offences are expected to be filed within the next 3 to 4 days. U.S. President Donald Trump said that a deal with Iran, including opening of the Strait of Hormuz, has been largely negotiated after consultation with Israel and other allies in the region. Announcing progress on his Truth Social platform, Trump said final aspects and details of the deal are being discussed and will be announced shortly. President Trump said he had spoken with leaders from Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan and Bahrain, along with Israel. Iranian Foreign Ministry spokesman Ismail Baghaei earlier today said to the state television that the U.S. and Iranian position had been converging in the last week, but warned that did not mean agreements would be reached on key issues. A major security scare has unfolded near the White House after multiple gunshots were heard close to the presidential complex in Washington, prompting an immediate lockdown response from law enforcement agencies. The U.S. Secret Service shot down a person, reportedly the suspect, near the scene, while a bystander was also struck down during the chaos. During the time of shooting, U.S. President Donald Trump was inside the White House. The IMD has focused

आकाशवाणी भुज समाचार ऑफिस में वाचे छे। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भार मुक्यो हतो के सरकारी नौकरी नागरिकों जीवन ने सुधारवा अने सरल बनावा माटे एक महत्वपूर्ण माध्यम तरीके सेवा आपे छे। गईकाले वीडियो कॉन्फरेंसिंग द्वारा 19मा रोजगार मेला ने संबोधता आ वात कही।

0: आप हमारी यूट्यूब चैनल AII न्यूज गुजरात पर भी सुन ले सकते हो। वरिष्ठ नजर रखे हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/gu और हमारा एक्स हैंडल AIINews_ABAD फॉलो कर सो। केसीएस सुविधा संबंधित जातीय सतामणी और धर्मांतरण केस संदर्भ में महाराष्ट्र की मासिक अदालते 1500 पाना चार्जशीट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमे दाखल करी छे। तपास टीम वडा संदीप मिटके जणाव्युं हतुं के गईकाले चार आरोपी मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीर अत्तार सामे चार्जशीट दाखल करवामां आवी हती। तेमणे उमेर्युं के आगामी थोड़ा दिवसों में केस में 7-8 अन्य आरोपी सामे वधारानी चार्जशीट दाखल थवानी शक्यता छे। महाराष्ट्र ठाणे जिला में डोंबिवली में 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजीरियन नागरिकों की धरपकड़ करवामां आवी हती। पुलिस अधिकारी जणाव्या मुजब कोनी तालावा विस्तार में आ कार्यवाही हाथ धराई हती। पुलिस ने माहिती मिली हती कि केटलाक विदेशी नागरिकों आ विस्तार में गैरकायदेसर रीते रहता हता। अटक करायेला लोगों में 13 पुरुषों, 7 महिलाओं, 3 सगीर छोकरीओ और 1 सगीर छोकरीनो समावेश थाय छे। अमेरिका सांसदों और इमिग्रेशन अधिकार कार्यक्रमों ट्रम्प वहीवटतंत्र की नवी ग्रीन कार्ड नीति ने आकरी टीका करी छे। आ नीति हेठ ग्रीन कार्ड मे अरजदारों तेमना वतन की अरजी करवी पड़े। डेमोक्रेटिक सांसदों आ निर्णय खोटो गणाव्यो छे अने कह्युं छे कि तेओ अमेरिकन सीटिजनशीप एंड इमिग्रेशन सर्विसेस निर्णय सामे शक्य तेटला पगला लेशे अने तेने रद्द करवानी मांग करशे। आईटीमांथी कोने मुक्ति आपवामां आवशे ए हजु सुधी स्पष्ट करायुं नथी। एजेंसीए संकेत आप्यो छे कि आ नियम आश्रय शोधनाराओने लागू पड़ी शकशे नहीं। हजु सुधी स्पष्ट नथी कि आ मुक्ति H-1B वीजा पर काम करता विदेशी कामदारों पर लागू पड़शे कि नहीं। अमेरिकाना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पे जणाव्युं कि इजरायल अने आ क्षेत्रना अन्य सहयोगो साथे वातचीत कर्या पछी होर्मुझ समुद्रतुं खोलवा सहित ईरान साथेना सौदा पर मोटा भागे वाटाघाटो करवामां आवी रही छे। सांभळीए आ अंगे एक अहेवाल।
1: श्री ट्रम्प ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: आईपीएल क्रिकेट में कैप्टन श्रेयस अय्यर ने अनम 101 रन की मदद से पंजाब किंग्स गईकाले रात्र लखनऊ ना एकाना क्रिकेट स्टेडियम खाते लखनऊ सुपर जायंट्स ने 7 विकेटे हराव्यु हतु। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मैच रमाशे। प्रथम मैच में मुंबई इंडियंस बपोरे मुंबई ना वानखेड़े स्टेडियम खाते राजस्थान रॉयल्स सामे टकराशे, जयरे बीजी मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता ना ईडन गार्डन्स खाते दिल्ली कैपिटल्स सामे रमशे। अने हवे आजना अखबारों ना मुख्य समाचार रजू करे छे करण मकवाणा।
2: આજના મોટાભાગના અખબારોમાં પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધારા અંગેના સમાચાર હેડલાઇનમાં વાંચવા મળી રહ્યા છે। ગુજરાત સમાચારની હેડલાઇન છે, બિલ્લી પગે આવતી મોંઘવારી, પેટ્રોલમાં 87, ડીઝલમાં 91 પૈસાનો વધારો। સંદેશ લખે છે, પેટ્રોલ ડીઝલ ફરી મોંઘા થયા, 10 દિવસમાં 3જો ભાવ વધારો। ફૂલછાપનું મુખ્ય શીર્ષક છે, મોંઘવારીનો ડોઝ, પેટ્રોલ ડીઝલ સીએનજીમાં ભાવ વધારો।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज नवी दिल्ली में अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो साथ द्विपक्षीय बैठक करते। सरकार व्यापक जाहिर परामर्श में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 हेठ मुसद्दा नियमों प्रकाशित करा। टीसीएस सुविधा संबंधित जातीय सतामणी और धर्मांतरण केस में एसआईटीए महाराष्ट्र की मासिक अदालत में 1500 पाना चार्जशीट दाखिल करी। અમેરિકાના સાંસદો અને ઇમિગ્રેશન અધિકાર કાર્યકરોએ ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રની નવી ગ્રીન કાર્ડ નીતિની આકરી ટીકા કરી અને આઈપીએલ ક્રિકેટમાં પંજાબ કિંગ્સે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને 7 વિકેટે હરાવ્યું। આકાશવાણી પરથી સમાચાર પૂરા થયા, હવે પછી આપ 1:20 રાષ્ટ્રીય સમાચાર સાંભળી શકશો।

नाटक पिकनिक आज संभव है। कार्यक्रम प्रस्तुति जिला नेता और धारा अधिकारी वर्ष वाले मनोरंजन में गीतकार नजरुल सुल्तानपुरी ने पुण्यतिथि पर विशेष फिल्म गीतों 247 मिनट लोक संगीत

निजी समूह आरंभ गुरुवार 5:12 6:30 युवावाणी और 7:20 गांव मंत्रो 8:45 समाचार संध्या दिल्ली केन्द्र से विलेता राशि

लगे रविदास स्वरीय संगीत सभा में पंडित हरशंकर भट्टाचार्य ने सितार वादन आज सांभ आ कार्यक्रम दिल्ली केन्द्र थी रिले करा श्रोता मित्रों आता मेरा आज हवे पशी प्रसारित होना कार्यक्रमों की विगत आ विगत आप आकाशवाणी भूज केन्द्र पर सांभ रहा।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन अगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नासिक पीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में चार आरोपों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी और युद्ध जलमग्न मुद्दे को फिर से पड़ा भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण

0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों के बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
1: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सचिव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास के सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।

0: रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलिंग प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 156 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
2: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
1: सरकार ने विकसित भारत जीव रांची अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जीव रांची एक्ट में 20 साल

0: relationship condition नहीं लागू होगा। अक्षय पाटिल आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: महाराष्ट्र की वैश्विक अदालत ने विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और दुर्मंत्रण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मटके ने बताया कि कल चार आरोपियों नितिन पटेल, निधि खान, जानी शेख और यूसुफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIN हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।

0: समाचार प्रभाग में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में हॉर्मुज जल बंधन नदी खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
1: ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इसराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाका ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमरीका द्वारा ईरान के गुंडागरों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने हॉर्मुज जल बंदरगाह को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और हॉर्मुज जल बंदरगाह पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर कर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर आएंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है।

0: बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ यह उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ल्ड 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्य और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आयोजन का सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नियाज।
1: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ता में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान कहता है मोदी से मिले रूबियो, अमेरिका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार रूबियो से मिलकर पीएम बोले भारत से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रदान करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ता ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की यह परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिर दर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में यह 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में

कुछ मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 19वां वार्षिक रोजगार मेला में गई देश 51,000 युवाओं ने नियुक्त पत्र एनायत कर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिका विदेश मंत्री प्रादेशिक तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर चर्चा करी। यूएई राजधानी मुलाकात दरमियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यूएई राष्ट्रपति ने विश्वविख्यात कच्छी रोकाण करने ट्री ऑफ लाइफ

पूछ के अंदर से गुड मॉर्निंग गुजरात सेविंग आपने पसंद साबिता का मंच श्रोता मित्रों ने अपने दोस्त रिद्धि मेहता नमस्कार।

0: नमस्कार, फिल्म आपने पसंद?
1: हाँ
0: जी, चौकस थी, आपने फरमाइश ले ली है। आप कई गीत सुनते हो?
1: फिल्म शक्ति सिंस 1982 क्या मैं इसके से पॉपकॉर्न की खराब हो गया?
0: अरे क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है, खूब अच्छे सुंदर गीत है, चक्कर से समझाइए। अभी आपके साथ ही आप कोई मित्र का नाम लेना मांगे छो?
1: मेरा वाइफ है दीपा। हाँ, मेरा स्टाफ का जो नाम है आवास एनिमेशन
0: जी। आकाशवाणी बहुत सारे जोड़ा रहो सांभता रहो।
1: जी जी, सरस प्रोग्राम हूँ, प्रसारित करता रहो
0: जी। धन्यवाद।

0: tudo bem se alterar sem máscara, não, né?
1: Não sei o que é sem real. Thank you so much. Have a
0: मैं मूवी का नाम है मन
1: हाँ मन फिल्म का
0: इसका गाना रहेगा तो वो खुशियाँ और गम कहती है फिर भी वो चुप है
1: जी बहुत अच्छा गाना है
0: मैं कुछ दोस्तों के यहाँ सुनने जा रहा था
1: बिल्कुल बताइए
0: हमारे मित्र पुरुषोत्तम कुमार जी गोल्डी जी राकेश जी पूरन जी पुरुषोत्तम कुमार जी अविनाश जी भगवान सिंह परमार जी और तमाम सुनने वाले हैं और आप
1: जरूर सुनेंगे आपकी पसंदी का गीत ऐसे ही हमें सुनते रहिए हमारे साथ जुड़े रहिए
0: जय श्री
1: महाकाल।

0: नमस्कार सैनी आपकी पसंद
1: जी नमस्कार
0: नमस्कार आपका जी किरण भाई आप हमारा नियमित श्रोता मित्र छो अने आपने अने आपना परिवार ने वर्षो थी ओळखी छे केम छो
1: अरे
0: जी मेहता जी
1: જરૂરથી
0: સમજાવી દઈએ

0: नमस्कार, स्वामी नाम प्रसन्न
1: जी नमस्ते
0: जी नमस्ते आप कौन
1: जी? मैं गांव बछवाड़ा प्रसन्न मागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है।
0: मैं भी बढ़िया हूँ और आपसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है।
1: जी हमारे यहाँ पे काफी गर्मी हो रही है, अभी 45 से 40 डिग्री करीबन टेम्परेचर चल रहा है। कुछ चलते जानवर भी है हमारे आस पास में, जैसे कि चिड़िया, तोता, मैना, कोयल, ये जो पक्षी होते हैं ना
0: टिड्डियों
1: भी, हमने मतलब पानी की व्यवस्था कर रखी है।
0: बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा काम किया।
1: जैसे हमें तो पानी पीने मिल जाता है कहीं कहीं, जैसे कुछ पशु पक्षी होते हैं ना, इनको इतनी गर्मी में पानी कहीं पर भी नहीं मिलता, तो फिर हमें थोड़ी सी व्यवस्था करनी चाहिए। और आपको बताऊँ, जैसे मैं किसान हूँ, अगर हम पक्षी जाते हैं और ट्यूबवेल या कुएं की मोटर चालू करते हैं ना, मतलब जब पानी चालू कर देता है तो बहुत सारे पशु पक्षी मतलब पानी पीने आ जाते हैं, तो वो उनको देख कर भी बड़ा अच्छा लगता है हमें। हम समय समय पर जाके मतलब सिंचाई नहीं करनी होती है ना, फिर भी हम पानी भर के रख देते हैं पशु पक्षी पंखे जानवर के लिए।
0: बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, और ऐसे ही हम सभी लोगों को ये चीज करनी ही चाहिए कि आसपास के लोगों का और आसपास के जानवरों का, बर्ड्स का, एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए।
1: जी मैं बताऊँ आपको, मोबाइल फोन पैसे सुन रहा हूँ आपके
0: जी,
1: और दोनों प्रोग्राम में ज्यादा पार्टिसिपेट करता हूँ। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, हेलो करना चाहिए एक्टर ग्रुप, मतलब हमें हर राज्य के कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिल जाती है। जब मोबाइल एक्सरे पसंद आता है मुझे, मतलब एकदम स्पष्ट और साफ पसंद मिलता है हमें।
0: अरे वाह, तो वैसे आज कौन सी फरमाइश है आपकी, क्या सुनेंगे?
1: जी बिल्कुल, मैं फिल्मों का मैं मुख्य शादी करूंगी और मैंने तो बोली लाल जरूर
0: सुनाएंगे, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सुनते रहिए।
1: जी थैंक यू सो मच, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
0: जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके।

0: नमस्कार
1: आपका
0: मैडम जी, मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय बैंक बोल रहा हूँ जी।
1: कैसे हैं आप?
0: बहुत बढ़िया बहन जी, आप बताओ बहन जी कैसे हो?
1: हम भी बहुत बढ़िया है,
0: अच्छी बात है जी।
1: और बताइए क्या चल रहा है?
0: बस बहन जी आजकल तो

0: नई पटरिया गर्मी प्रचंड रूप में उसी को झेल रही है पंजाब में, तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी।
1: अच्छा, यहाँ पे भी बहुत गर्मी है।
0: चलो गर्मी सर्दी तो आती रहती है जी।
1: जी
0: मन खुश होना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए।
1: 100% सही बोला। आज क्या फरमाइश है आपकी?
0: मैं भी आज मैं सुनूंगा गीत, फिर मैं भी दो लक्ष मंदिर का उसका टाइटल सुनाऊंगा, सुमन श्रियापुर जी और किसान जी के आवाज में।
1: हाँ,
0: मेरी इच्छा में उसको थोड़ा सा बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी, जरूर, बिल्कुल।
0: यह

0: नमस्कार, फ्रेंड आपने पसंद। नमस्कार, हाँ जी आप कौन? भगवान जी कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं दीदी।
0: अच्छा, मतलब आज भगवान जी ने हमें सामने से याद किया है जी? जी कैसे हैं आप, घर में सब कैसे हैं?
1: अच्छे हैं
0: जी। और
1: फिल्म का नाम है दिल्ली गई जो पिया मन भाए, वो गाने के बोले ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में, प्यार की छांव में बिठाए रखना, हमारे हेलो फरमाइश देखा लेंगे थोड़ा सा रोक मिलेगा, सभी दोस्तों को लेने के कहेगा और धीरज भाई हमारी दी है गुजरात से उनको भी लेने के कहेगा दीदी, और सभी तरह भाई है भी।
0: जी जी जी जरूर सुनाएंगे। हाँ जी, और ऐसे ही आकाशवाणी बूथ के साथ जुड़े रहिए और हमें सुनते रहिए।
1: धन्यवाद दीदी
0: जी, धन्यवाद।

भोज हस्तक्षे मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिकन विदेश मंत्री मार्को रूबियो साथ द्विपक्षीय बैठक करते। शिक्षण मंत्रालय हेठ में शाला शिक्षा और साक्षरता विभाग ने नई दिल्ली में सफल विज्ञान कार्यक्रम 2026 में भाग लेना विद्यार्थियों इच्छुक ने मंजूरी आपी। केन्द्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आती भारतीय व्यापारी नेता प्रतिनिधिमंडल साथ कनेगाने 3 दिवस की मुलाकात। केन्द्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल नई दिल्ली में द बोइंग कंपनी में वैश्विक लोकनीति और व्यापार रणनीति कार्यकारी उपमुख जैक श्रॉफ के साथ मुलाकात करी। ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर 1147 करोड़ रूपया खर्चे राज्य 20 रस्ताओं अपग्रेडेशन कराशे। राज्य के अनेक जिला और तालुका पंचायतों में होदेदार निभाया। राज्य की विविध जेलों में कैदी 44 12-10 की परीक्षा में सफलता मिली। यूएई राजद्वारी मुलाकात दरमियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यूएई राष्ट्रपति ने विश्व विख्यात कच्छ रोगन कला ने ट्री ऑफ लाइफ में मास्टर पीस भेट आप। राज्य सरकार ईवी

पंजाब किंग्स से लखनऊ सुपर जायंट्स ने 7 विकेट हारो। हरियाणा ने भी आर्मी साथ दो राज्य में कटिया पिस्तौल मारवा थी लेकिन उसने अगे करी। अभी कुछ है मुख्य समाचार संजय 5:10।

0: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय कई विषयों पर चर्चा की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे।
1: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री जेरी हॉल, जापान के विदेश मंत्री कोशी मित्सुओ मिकावा और अमेरिका के विदेश

दोस्तों, आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी करतार सिंह सरभा की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। कम उम्र में ही देशभक्ति की अलख जगाने वाले करतार सिंह सरभा गदर आंदोलन के प्रमुख युवाओं में से एक थे। उन्होंने भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जय भारती कार्यक्रम का ये अगला गाना फिल्म केसरी से स्वर दिया है बी प्राक ने, संगीत अर्को का और बोल लिखे हैं मनोज मुंताशिर ने।

तापमान मापने की दुनिया को नई दिशा देने वाले महान भौतिक वैज्ञानिक और आविष्कारक डेनियल ग्रेवियर फ़ारेनहाइट को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। उन्होंने फ़ारेनहाइट तापमान मापक प्रणाली और आधुनिक थर्मोमीटर के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। विज्ञान के क्षेत्र में उनकी शोध और आविष्कार ने तापमान मापन को अधिक सटीक बनाया। उनका योगदान आज भी विज्ञान, चिकित्सा और दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जय भारती कार्यक्रम में अब सुनिए मिशन मंगल फिल्म का ये गाना, शिल्पा राव, आनंद भास्कर और अभिजीत श्रीवास्तव के युगल स्वर में।

और दोस्तों, इसी के साथ आज का जय भारती कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है। आज के जय भारती कार्यक्रम का सफर आपने तय किया आपकी रेडियो दोस्त ईशा के साथ। जय जवान। जय भारती कार्यक्रम का प्रसारण किया गया आकाशवाणी के अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और भुज केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
2: These would be the principles with which we would approach that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपने आप

शासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री चार दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वांग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एच 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

0: सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्त स्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। यह धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्शी पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के युकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया।

विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हैं ना असमिया भाषा गीत?
1: जी हाँ।
0: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माती रे,
1: माती रे,
0: एई माती रे, मोरो मोते,
1: मोरो मोते,
0: माती के,
1: माती के,
0: सुमीलो,
1: सुमीलो,
0: माती के सुमीलो। हो गया ना यहाँ तक? आगे लिखो। ए माती ते, ए माती ते जीबॉन सोबी, जीबॉन
1: सोबी,
0: जी कैसे जा के नीचे बिंदी लगा लेना है ना, तो जीबॉन सोबी, आकी आकी मोसी लो। अब पहला अंतर आएगा इसके बाद। दूर आकाहार,
1: हाँ,
0: ये जो ना आकाश श को बोलते हैं वहाँ ह की तरह से, तो आकाश ये ह और ह के बीच में आकाखार भी नहीं आकाहार भी नहीं आकाहार आकाहार लिखो। दूर आकाहार,
1: दूर
0: रोहन कियोनु,
1: कियोनु
0: लागे लागे।

नो ना हुआ खून ऐसे बोलना है एक बार और दूसरे ना हुआ दूसरे में ऐसे लंबा कर लेना है खून दौर से लो एक दो तीन चार

विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दी।

संबोधित किया और कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा में ऊर्जा आपूर्ति निगम का महत्वपूर्ण

0: श्री जैन ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद से पीड़ित हैं। इससे पहले बातचीत की शुरुआत में डॉक्टर जयशंकर ने भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक स्तर पर भागीदारी का उल्लेख किया। श्री गोगोई 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में फालका विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के मतों की गिनती के 20वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिव्यांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल कर ली है। मतगणना डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय में चल रही है। भाजपा के दिव्यांशु पांडा ताजा समाचार मिलने तक 1,04,000 मतों से आगे चल रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर है, जबकि कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे स्थान पर है। तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान चौथे स्थान पर चल रहे हैं। महाराष्ट्र की नासिक अदालत ने विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मेटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा शुल्क लिया गया जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। बोर्ड के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामले में शुल्क खाते में लौटा दी जाएगी। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के

0: अपने उज्ज्वल भविष्य में संकल्प करिए।
1: अपनी रहा शो गुलमोहर कार्यक्रम कार्यक्रम में हमें सांभिए काइट्स फिल्म गीत केके नो स्वर छे।
0: विदेश मंत्री भारत और अमेरिका वच्चे गाढ़ सहयोग पर आधारित व्यापक वैश्विक व्यापक भागीदारी हो जाए। सरकार इमरजेंसी जता केसों ने ध्यान में रखी भारतीय नागरिकों ने अफ्रीकन देशों ने बिन जरूरी मुसाफरी न करने सलाह अपी। भूज आदिपुर वे डबल रेलवे ट्रेक नाखवा सर्वे शुरू कर केन्द्रीय जाहिर सेवा आयोग द्वारा लेवाती सिविल सर्विसेस की प्रिलिमिनरी परीक्षा में आज देशभर की साथ राज्य में चुस्त सुरक्षा बंदोबस्त वे योजा। राज्य अनेक जिला तालुका पंचायतों में होदगारों ने आया कच्छ जिला पंचायत प्रमुख तरीके प्रभावित रेलवे की वर्णी करी उप्रमुख तरीके महावीर सिंह जाडेजा कच्छ जिला पंचायत कारोबारी चेयरमैन पदे हरीश भंडेरी ने वर्णी। दीनदयाल पोर्ट खाते जर्मन प्रतिनिधिमंडले पोर्ट की मुलाकात लीधी। जर्मन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी दीनदयाल पोर्ट में कई रीते लागू कर सकते अंगे शक्यता चकासवा। ग्रीन टेक्नोलॉजी उपयोग कर 1147 करोड़ रूपया खर्चे राज्य में 20 रस्ताओं अपग्रेडेशन कराशे। राज्य विविध जिलों में 44 केजीए धोरण 10 और धोरण 12 बोर्ड की परीक्षा में सफलता मेरी। यूएई में राजधानी मुलाकात

गुरुहार कार्यक्रमनो अंतिम गीत किस्मत कनेक्शन फिल्मनो आतिफ असलम अने अलका याज्ञिकनो स्वर छे। संगीत पैटर्नो मोल छे सईद कादरीना।

0: de la cançó. Fernanda, som les AQ, les sabates que poden ja el somiu.
1: श्रोतामित्रों ने प्रस्तुत किया लोक संगीत का कार्यक्रम। सर्वप्रथम सांभरिए प्राचीन भजन सरजूदास हरियाणी ना स्वर्मा। रचना छे लीरल बाईनी।

का भविष्य पाए थे। रिजर्व अधिकारियों ने निर्णय से संतोष न पाए तो गुजरात राज्य अन्न आयोग गांधीनगर में सीधी अर्जी की अपील करी न्यायमूर्ति शतोष। फोन नंबर 0709 232 5849। शू तुम्हें जानो।

0: नमस्ते, यह आकाशवाणी है सिंधी खबरों सागर में दीपा गुरनानी। सबको अवल अहम खबरों। भारत और अमरीका उन्नी मुल्क के विच में रणनीतिक बानी भागीदारी के अहम ध्यान आयो। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चो तुर्त व्यापार समझौतो जरूरी। मुल्क जिले शक्ति रसद के गुना गुनित टेबल। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत के सबका अहम भागी भागीदार में हित करे ध्यान आयो। ओलह बंगाल में फलका विधानसभा खिते की बहर वोटिंग में भाजपा जो उम्मीदवार देवांशु पांडा सभा अगते। सरकार इबोला के वगैरह विचार के ध्यान में रखे भारतीय नागरिकों के कांगो युगांडा ए दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा का बचने की सलाह दिनी। आईपीएल क्रिकेट में अज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स जो मुकाबलो दिल्ली कैपिटल्स। खबरों तफसील से बुधना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अज नई दिल्ली में केतरी मुद्दों से गुफ्तगु कई। बिन्ने पक्ष भारत और अमेरिका वधल भागीदारी के अहम बुधायो। उन भागीदारी खास तौर पर व्यापार शक्ति मोबिलिटी ए इलाकई सलामती के खिते में है। डॉक्टर जयशंकर भारत और अमेरिका के विच में वसी आलमी गडियल भागीदारी है जो गहरे सहकार से आधारित है। डॉक्टर जयशंकर
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक और समाज के बारे में हमारे बीच

डॉक्टर जयशंकर इहो बि चयो त ॿिन्ही मुल्कनि जी आवाम जा आपसी लाॻापा अहम आहिनि ऐं कानूनी तौर ते अचवञ में खलल पैदा थियण न घुर्जे। ईरान चिकताण जे बारे में श्री जयशंकर चयो त भारत ऐं अमरीका ॿई मुल्क इन ॻाल्हि जी पुठिभराई कनि था त समूरी दुनिया में तवानाई जी क़ीमत किफ़ायती रहे। अमरीका जे विदेश मंत्री मार्को रूबियो चयो त भारत अमरीका जे सभ खां अहम गॾियल भाङे भाउरनि मां हिकु आहे। श्री रूबियो चयो खुशहाल राष्ट्र जो निर्माण करे सघे थो। अॼु सुबुह गुजरात जे अहमदाबाद में साइकिल

0: राष्ट्रीय मंडल ॾींहुं जे मौके ते हुन चयो त साइकिल हलण सां प्रदूषण जे हल सां गॾो गॾु ॿारहं पदार्थ जी बि बचति थींदी आहे। इन मौके ते उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, अदाकार आयुष्मान खुराना ऐं ओलंपिक मेडल सोबारो गगन नारंग बि हाज़िर हुआ। सीबीएसई दर्जे ॿारे जे नतीजनि बाबति हिकु नओं पदनामो जारी कयो आहे। इहो पदनामो एकवीह ऐं ॿावीह मई ते ग़लति फेर जे कटौतीअ खे ॾिसंदे जारी कयो वियो आहे। इहो मसइलो जाचल आंसर शीट जी स्कैन थियल कॉपियुनि जी दरख़्वास्त दौरान दरपेश आयो। बोर्ड चयो त कुझु मामलनि में वधीक अदायगी कराई वई आहे, जॾहिं की कुझु मामलनि में घटि अदायगी वरिती वई आहे। बोर्ड मूजिब वाधो वरितल अदायगी मोटाई वेंदी ऐं घटि अदायगी वारनि शागिर्दनि खे बकाया अदायगीअ लाइ ॼाण ॾिनी वेंदी। बोर्ड इहो बि वाजे कयो त मुनासिब अदायगी वारनि सभिनी दरख़्वास्तुनि जे मामलनि में आंसर शीट मैसर कराई वेंदी ऐं शागिर्दनि खे ॿीहर दरख़्वास्त ॾियण जी ज़रूरत कोन पवंदी। हीअ ख़बरूं तव्हां आकाशवाणी तां ॿुधी रहिया आहियो। हीअ ख़बरूं तव्हां असांजे यूट्यूब चैनल एयर न्यूज़ गुजरात ते ॿुधी सघो था। वधीक ख़बरुनि जे लाइ तव्हां असांजी वेबसाइट newsonair.gov.in खे फॉलो करे सघो था। सरकार इबोला विचुड़ाव जे वधंदड़ मामलनि खे ध्यान में रखंदे भारतीय नागरिकनि खे अफ्रीकी मुल्क कांगो, युगांडा ऐं ॾखण सूडान जी गैर ज़रूरी यात्रा न करण जी सलाह ॾिनी आहे। हिकु रिपोर्ट
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारत

0: घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत अफ्रीका मर्ज जाप्ता ऐं रोकथाम मर्कज़नि खे तबीबी सामग्री ऐं सेफ्टी किट जी पहिरीं खेप मोकिली आहे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर सोशल मीडिया पोस्ट में चयो आहे त इहा सामग्री उभरंदड़ इबोला बुहरान सां मुंहुं मुक़ाबिल थियण में अफ्रीका खे टेको ॾियण लाइ वचनबद्ध आहे। भारत इंसानी मदद कोष जे तहत आफ़त ऐं कुदरती आपताउनि जे दौरान मददगार मुल्कनि खे लगातार टेको ॾींदो रहियो आहे। आकाशवाणी जो 90 साल पूरा थियण जे मद्देनजर कर्सियोंग यूनिट अॼु आकाशवाणी @90 मैराथन जो आयोजन कयो। 3 किलोमीटर जी इन डुक में 50 खां वधीक पुरुष ऐं महिलाऊं हिसो वरितो। कर्सियोंग जे विधायक सोनम लामा कर्सियोंग खां मैराथन खे रवानो कयो। कॉर्डे मंत्रियुनि जी हिकु बैठक मंगल ॾींहुं थियण वारी आहे। हिकु अहिवाल नुमाइंदे खां
0: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: भारतीय जनता पार्टी जो बाला अगवान नरकजी मंत्री पीयूष गोयल कांग्रेस अगवान राहुल गांधी के देशद्रोह जो डोह मणियो है। सोशल मीडिया के पोस्ट में उन्हें बुधाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाफ राहुल गांधी जा बयान कांग्रेस ए मुखालफतियों की साजिश ला इशारो कन था। खबर है रंग जगत की। आईपीएल क्रिकेट में अज शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स जो मुकाबलो दिल्ली कैपिटल से थन्द। यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेली वी। होडा वरिंदरवीर सिंह फेडरेशन कप एथलेटिक्स टूर्नामेंट में पुरुषों के 100 मीटर चटाभेटी में सोनू तमको पैंजे नाले कयो आहे। दिल्ली के उप गवर्नर अरिजीत सिंह सिंधु वरिंदरवीर सिंह के सोनू तमको खटने के मणे मुबारकू दिनों। वरिंदरवीर सिंह 100 मीटर डुक सिर्फ 2:05 सेकंड में पूरी कई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधु वरिंदरवीर सिंह के यह हासिला समूरे मुल्क के नौजवानों के हिमथी। आबामेक में अज ओभरी उत्तर प्रदेश, ओभरी मध्य प्रदेश ए विदर्भ में लू लगने जा इम्कान जाहिर कया। आखिर में अहम खबरों पर नजर विजासी। भारत और अमरीका बने मुल्क के विच में रणनीतिक भागीदारी के अहम जाना। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर

उत्तर आपार समझौतो जरूरी मुल्क जला शक्ति रसद जीगुना गुने घटे बल। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत के सबक अहम बानी भाईवरन में हित गल जाए। उन्हें बंगाल में सरकार विधानसभा खिते जी बेहर वोटिक में भाजपा जो उम्मीदवार देवांशु पांडा सबक अगते सरकार एबोले जो रविंद्र विचार के ध्यान में रखें दे भारत नागरिक के कांगो युगांडा दक्षिण सूडान जी गैर जरूरी यात्रा का बचाने की सलाह दी। आकाशवाणी के सिंध समाचार जो एहो अंक के समाप्त। नमस्ते।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

संघर्ष में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इस्राइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने कहा कि श्री डोभाल और श्री रूबियो ने द्विपक्षीय व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता के प्रति फिर प्रतिबद्धता व्यक्त की। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर है। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलका विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी

उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक वोटों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। फंतासी इस सीट को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े रहें। कोलकाता में IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीत कर गेंदबाजी का फैसला किया। इसी बीच मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक पहले ओवर में 5 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही यह समाचार।

राज कोटम दवा वडोदरा एवं भोज प्रस्तुत है ग्रामजन माता नो कार्यक्रम गाम नो चूरू जेमा आज छे राजकोट केन्द्र नो प्रदान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार का मकबूल माजे मुख्य समाचार। भारत और अमेरिका बने देशों वच्चे की व्यूहात्मक भागीदारी ने महत्व पर भार मूक्यो। पश्चिम बंगाल में फालका विधानसभा बैठक में टेक आ चुकी भाजपा देवांशु पांडा ने जीत। सरकारे इबोला रोगचाला ने पगले भारतीय नागरिकों ने अफ्रीकन देशों ने बिनजरूरी मुसफरी न करने सलाह अपी। पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में रेलवे लाइन पर फैला विस्फोट में 24 की मौत की घटना इजाग्रस्त। वियतनाम में रमाई रहे कुश्ती स्पर्धा में भारत एक सुवर्ण सहित 6 चंद्रक जीता। समाचार विगतवार। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय मुद्दे व्यापक चर्चाओं करी। बने नेताओं ने भारत अमेरिका व्यूहात्मक भागीदारी की मजबूताई की पुनः पुष्टि करी और व्यापार ऊर्जा गतिशीलता और प्रादेशिक सुरक्षा सहित सहयोग मुख्य क्षेत्रों ने रूपरेखा अपी। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वाटाघाटों पीछे एक पत्रकार परिषद में संबोधता डॉ जयशंकर वहली तक व्यापार करार पूर्ण करने जरूरत पर भार मूको। मध्यपूर्व घटनाक्रम अंगे बोलता पुनरुच्चार करो कि भारत आ क्षेत्र में शांति और स्थिरता इच्छे।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
2: बहुत

0: दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: श्री रूबी आगामी 26 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। दरमियान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अमेरिका में विदेश मंत्री मार्को रूबियो साथे द्विपक्षीय मुद्दे चर्चा करी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार देवांशु पांडेय फाटला विधानसभा बैठक में पेटा चुटनी में जीत मेरी। श्री पांडेय यह बैठक 1,09,000 की वधु मतों से जीती लीधी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी उम्मीदवार शंभुनाथ उर्मी 40,600 मतों से बीजा स्थाने रहा, जयरे कांग्रेस उम्मीदवार तीजा और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार चौथा स्थाने रहा था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुटनी मतदान दरमियान मोटा पाये

बजू बाबरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। आज के कलाकार थे सैक्सोफोन वादक सुरेश यादव। अब आज का साज और आवाज कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: भगवान ऐसे भड़क कर और लाखों पति किसी को ना दे। सवेरे जब ऑफिस जा रहे थे कम से कम 10 बार जनाब को घर जल्दी आने को बोला था, लेकिन क्या मजा तो जनाब जल्दी घर आ जाए।
1: सीमा सीमा, अरे जल्दी दरवाजा खोलो, कहाँ हो?
0: चूल्हे में।
1: चूल्हे में? अरे वहाँ क्या कर रही हो? जल्दी बाहर निकलो वरना जल जाओगी।
0: मैं जलूंगी मामू, तुम्हें क्या?
1: पर हुआ क्या है? अगर हम भी तो सुने कि तूड़ियाँ क्यों चढ़ी हुई है।
0: तुम्हें कुछ याद भी रहता है? सवेरे जब तुम ऑफिस जा रहे थे तब मैंने कितनी बार कहा था कि घर जल्दी आ जाना, पर मेरी कौन सुनता है? बैठ गए फोटो चल दोस्तों के साथ ऑफिस हाउस में।
1: तुम भी कमाल करती हो सीमा। अरे ऑफिस से सीधा घर चला रहा हूँ, ये देखो अभी सिर्फ 7 बजे हैं और 6 बजे ऑफिस से निकलता हूँ, और ट्रैफिक की हालत तो तुम जानती हो, ऑफिस से घर आने में कम से कम 1 घंटा लग ही जाता है।
0: अगर कैसे लगेगी तो वापस चले जाओ।
1: तुम तो बस बार बार पे झगड़ना जानती हो। खैर ये बताओ कि मुझे जल्दी घर आने के लिए क्यों कहा था? हाँ, और आज ये बनठन कर कहाँ जाने का इरादा है?
0: तुम्हें दोस्तों के अलावा कुछ याद भी रहता है? कुछ याद है कि आज कौन सी तारीख है?
1: तारीख 24 अप्रैल।
0: हाँ 24 अप्रैल हमारी जिंदगी में क्यों महत्वपूर्ण है?
1: 24 अप्रैल महत्वपूर्ण? अरे हाँ याद आया, आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है, यानी मैरिज एनिवर्सरी। अब याद आया कि आज आप मुझे ऑफिस से जल्दी घर आने के लिए क्यों कह रही थी, और आप ये सज धज कर क्यों बैठी हैं? मैं शादी की सालगिरह, बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
0: बस बस रहने दो।
1: अगर तुम सवेरे ही मुझे बता देती तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आता।
0: अब मुंह देख के बात मत करो, जिस आदमी को अपनी शादी की सालगिरह की ही याद नहीं आए उससे गिफ्ट की क्या उम्मीद की जा सकती है?
1: अच्छा बाबा माफ कर दो, कान पकड़ कर माफी मांगता हूँ।

0: तो हमेशा की तरह कान पकड़कर उठक बैठक लगा लूं। अरे लगा ही देता हूँ, इक्कम एक, दुक्कम दो, तिक्कम तीन।
1: अरे क्या कर रहे, कोई देखेगा तो क्या कहेगा?
0: अब तो बोलो माफ किया।
1: अच्छा बाबा माफ किया।
0: ये होने बात अच्छा, मेरे पास में बराबर में आके बैठो ताकि हम आज का प्रोग्राम तय करें।
1: अच्छा पहले तुम बताओ कि तुमने क्या सोचा है।
0: अरे फिर तुम यहाँ बुढ़ी पर क्यों बैठे हो? यहाँ सोफे पर मेरे बराबर में आकर बैठो ना।
1: नहीं नहीं, अब मैं पहले आपके बराबर कैसे बैठ सकती हूँ?
0: तू मेरे बराबर में क्यों नहीं बैठ सकती?
1: अभी कल ही मैंने गुरुजी के प्रवचनों में सुना कि पत्नी का बैठने का स्थान पति से नीचा होना चाहिए, और प्रवचनों में ये भी कहा गया कि पत्नी तो पति के चरणों की दासी होती है।
0: मैं क्या सुन रहा हूँ, कहीं सपना तो नहीं देख रहा? देखो सीमा, तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ कि क्या तुम वही सीमा हो जिससे मेरी 20 साल पहले शादी हुई थी?
1: मैं तुम्हारी वही 30 साल पहले वाली सीमा हूँ।
0: देखो सीमा, तुम ये किन बच्चियों से बातों को लेकर बैठी हो? अरे ये सब पुरानी बातें हैं, आज के जमाने में तो पति पत्नी दोनों बराबर हैं, और वैसे भी पति पत्नी तो गृहस्थी की गाड़ी के तो पहिए हैं। अब अगर इनमें से एक पहिया भी कमजोर पड़ा तो समझ लो कि गृहस्थी की गाड़ी डगने जाने लगती है।
1: अब तुम कुछ भी कहो पर मैं तुम्हारे बराबर नहीं बैठ सकती।
0: ठीक है, अगर तुम सोफे पर मेरे बराबर में नहीं बैठ सकती तो मैं दूसरी बुड्ढी लेकर तुम्हारे बराबर में बैठ जाऊंगा।
1: अगर तुम मुड्ढी पर बैठोगे तो मैं चौकी पर बैठ जाऊंगी।
0: अच्छा, और अगर मैं भी चौकी पर बैठ गया
1: तो मैं पीढ़ी पर बैठ जाऊंगी।
0: और अगर मैं भी पीढ़ी पर बैठ गया
1: तो मैं जमीन पर बैठ जाऊंगी।
0: और अगर मैं भी जमीन पर बैठ गया
1: तो मैं जमीन में गड्ढा खोद कर उसमें बैठ जाऊंगा।
0: और अगर मैं भी जमीन में गड्ढा खोद कर उसमें बैठ गया
1: तो मैं तुम्हारे ऊपर उस गड्ढे में मिट्टी डाल दूंगी।
0: क्यों
1: नहीं तो क्या, इतनी देर से बहस किए जा रहे हो, ये नहीं कि आज का प्रोग्राम क्या है बताओ।
0: अरे हाँ, इस बेकार की बहस में ये तो भूल ही गया था कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। देखो अभी बजे हैं 7:30, हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाते हैं और उसके बाद फिर नाइट शो में पिक्चर देखने चलेंगे।
1: पिछले साल भी तो हमने यही किया था, इस बार मैं कुछ नया करने की सोच रही हूँ।
0: सोचता हूँ मैं भी कुछ नया ही करने की हूँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ तो बताओ तुम क्या नया सोच रही हो?
1: मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज बाहर जाने की बजाय घर में कुछ बनाया जाए।
0: हाँ भाई, ये भी अच्छा आइडिया। तो क्या खास बनाने की सोच रही हो?
1: अब तुम्हें तो पता ही कि मैं मलाई कोफ्ता बहुत अच्छा बनाती हूँ।
0: ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम मलाई कोफ्ता और मटर पनीर बहुत अच्छा बनाती हो।
1: तो ठीक है, कह रहा कि हम बाहर नहीं जा रही है, मैं घर पर ही मलाई कोफ्ता, मटर पनीर की सब्जी और करी पकौड़ा बना लेती हूँ। तुम हलवाई से 1 किलो रसमलाई और 1/2 किलो बादाम रोल ले आओ। और हाँ, चॉकलेट आइसक्रीम का एक फैमिली पैक लाना मत भूलना।
0: एक मिनट सीमा, तुम शायद ये भूल रही हो कि हमारे बच्चे बाहर गए हुए हैं और घर पर हम सिर्फ दोनों ही हैं।
1: है, मुझे पता है।
0: अरे तो फिर क्या पूरे मोहल्ले को बुलाने का इरादा है जो बाजार से इतना सामान मंगवा रही हो?
1: मैं सोच रही थी कि हमारी शादी की सालगिरह के जश्न में क्यों ना भैया भाभी और उनके दोनों बच्चों को बुला लिया जाए।
0: तेरे घर में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तुम अपने भैया भाभी को उसमें जरूर घुसा लेती
1: हो। मेरे भैया भाभी का आना तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, और पिछली बार शादी की सालगिरह पर तुमने भी तो अपने भैया भाभी को बुलाया था, उसकी क्यों नहीं कहते? वैसे भी तुम्हें मेरे रिश्ते टूटी आम नहीं सुनाते।
0: झूठ, बिल्कुल झूठ। देखो मैं हमेशा अपने रिश्तेदारों की बजाय तुम्हारे रिश्तेदारों को ज्यादा इज्जत करता हूँ।
1: जरा मैं भी सुनो कि मेरे कौन से रिश्तेदारों की अपने रिश्तेदारों से ज्यादा इज्जत करते हो?
0: देखो मैं अपने ससुर की बजाय तुम्हारे ससुर की ज्यादा इज्जत करता हूँ, अपनी सास की बजाय तुम्हारी सास की ज्यादा इज्जत करता हूँ, अपनी बहन की बजाय तुम्हारी बहन से ज्यादा प्यार करता हूँ।
1: ठीक है, अपनी चोंच बंद कर और चुपचाप बाजार जाकर मैंने जो सामान लिया है वो ला कर दो, और कान खोल कर सुन लो। अब अगर मेरे भैया भाभी के लिए कुछ भी कहा तो मैं गुरुजी के प्रवचन में सुनी बातों को भूल जाऊंगी।
0: ठीक है, लाओ थैले और पैसे दो।
1: ये लो खेला। हाँ पैसे मेरे पास है नहीं।
0: क्यों भाई, पैसे क्यों नहीं? अरे अभी परसों ही तो मैंने तुमको 3,000 रूपए दिए थे।
1: हाँ, बोल तो ऐसे रहो जैसे 3,000 ने 30,000 दिए हो। अरे 3,000 रूपए में तो जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, वो 3,000 रूपए तो हमारी किट्टी पार्टी में

0: जहन खर्च हो गए थे।
1: क्या तुमने किटी पार्टी में 3000 रुपए खर्च कर दिए? अरे सीमा, कितनी बार तुमको समझा चुका हूँ कि पैसे देखकर खर्च किया करो। अरे तुम एक क्लर्क की बीवी हो, किसी आईएएस की नहीं।
0: अरे मेरे पिताजी तो मेरे लिए आईएएस ही ढूंढ रहे थे, पर ये तो मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जब तुमसे शादी कर ली।
1: अरे तो ना करती, कौन तुम्हारे हाथ जोड़ने गया था?
0: देखो चीज मत बोलो, रोजाना सुबह शाम मुझसे शादी करने के लिए मेरे पापा की चौकट पर नाक रगड़ा करते थे।
1: झूठ, सफेद झूठ। बल्कि सच तो ये है कि तुम्हारे पापा खुद अपनी चौखट उखाड़ कर लाए थे मेरी नाक पर रगड़ने के लिए। अरे ये तो मेरी किस्मत टूटी थी जो उनकी बातों में अगर तुम्हारे जैसी भैंस से शादी करनी।
0: क्या कहा मैं भैंस?
1: हाँ हाँ, तुम भैंस, तुम्हारी अम्मा भैंस और तुम्हारा पूरा खानदान भैंस। अरे जा जा, बड़ी आई जबान खींचने वाली भीमसेन की औलाद।
0: क्या कहा? भीमसेन की औलाद?
1: हाँ हाँ, भीमसेन की औलाद।
0: तो ठीक है, अब मैं तुम्हें भीमसेन की औलाद बनकर दिखाती हूँ। तो मैं झाड़ू। अरे हाँ, ये रहा।
1: अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ,
0: अरे बचाओ, अरे जाओगे कहाँ? जहन्नुम तक नहीं छोड़ूंगी तुमको।
2: अरे सीमा बहन, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। कहाँ जा रही हो?
0: जहन्नुम में।
2: क्यों? तुमको जहन्नुम में जाने की क्या जरूरत पड़ गई?
0: वो गुड्डू के पापा गए हैं ना, उनको लेने जा रही हूँ।
2: पर गुड्डू के पापा वहाँ क्यों गए हैं?
0: आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसीलिए वो मेरे लिए बड़ा सा गिफ्ट ले गए हैं।
2: पर सीमा बहन, आपके लिए तो हरीश भैया गिफ्ट पहले ही ले आए थे।
0: मेरे लिए गिफ्ट?
2: हाँ, ये देखिए, हरी जी कह रहे थे कि आपको सरप्राइज गिफ्ट देंगे, इसलिए मेरे पास रखवा दिया था। और कह रहे थे कि मैं आधे घंटे बाद आकर आपको दे दूं।
0: क्या वो मेरे लिए गिफ्ट लाए थे?
2: हाँ, और ये भी कह रहे थे कि पहले होटल में खाना खाने जाओगे आप लोग और फिर उसके बाद मूवी का प्लान है।
0: क्या उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया और मैं इतनी छोटी सी बात पे उनसे झगड़ा कर बैठी?
2: क्या आज के दिन झगड़ा? ऐसा क्या हो गया?
0: अब क्या बताओ सरला बहन, उन्होंने बाहर खाने और मूवी का प्रोग्राम बनाया था और मैं अपने भैया भाभी को घर पर बुलाना चाहती थी और इसी बात पर झगड़ा हो गया और वो बाहर निकल गए। हे भगवान, मैं क्या करूं?
2: क्या तो इतनी सी बात की हरीश भैया से झगड़ गई? अरे सीमा बहन, और वैसे भी आज तो ये दिन तुम्हारा है, आप दोनों को एंजॉय करना चाहिए। भैया भाभी को बुलाने के लिए तो रक्षाबंधन भाई दूज के तैयार है ना?
0: मैं भी कितनी पागल हूँ जो आज के दिन उसे झगड़ा कर बैठी। हे भगवान, वो मुझे मिल जाए तो मैं उनके पैर पकड़कर माफी मांग लूँ।
2: सीमा बहन, आपको वाकई आपके बातों का पछतावा हो रहा है?
0: हाँ सीमा बहन, मैं उनसे अब कभी झगड़ा नहीं करूंगी।
1: अरे कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है।
0: तो जनाब यहाँ छुपे हैं?
1: हाँ। अरे अब तुमको छोड़ के इस उम्र में भला कहाँ जाऊंगा, और वैसे भी तुमको सरप्राइज जो देना था।
0: तो ये तो तुम्हारा सरप्राइज? ओ हरीश, तुम कितने अच्छे हो।
1: अरे अब ये सब छोड़ो, देखो तुम्हारे चक्कर में 8 बजे और अब जल्दी चलो।
0: अरे सला बहन, तुम भी चलो ना।
2: सीमा बहन, अभी अभी मैंने क्या समझाया था कि आज का दिन तो आप दोनों को एंजॉय करने का दिन है। आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अब जाइए और जल्दी जाइए, खूब अच्छे से एंजॉय करिए।
1: थैंक यू।

तो ये थी झलकी मैरिज एनिवर्सरी। इसके लेखक हरि नारायण शर्मा, निर्देशन किया H.S. व्यास ने। आपको बता दें ये आकाशवाणी के जयपुर केंद्र की भेंट अभी आपने सुनी।

फिर आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है। जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है।

0: की टन के साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा,
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे। छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनहरू।
0: बिजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: तो
0: सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम की शुरुआत फिजा फिल्म के गाने से, उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ें, गुलजार की बोल, अनु मलिक का संगीत।

कल हो ना हो इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल थे। शंकर एहसान रॉय का संगीत था। छिपे लोग कार्यक्रम के बाद ही दोनों छोटे से अंतराल के बाद

मैं बदलाव दीवाना टू सिंगर आप सुन रहे थे सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में कुमार के बोल थे। फिल्म है ओम शांति ओम। शान उदित नारायण श्रेय घोषाल सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजें जावेद अख्तर के बोल शंकर एहसान लाल का संगीत।

ओम शांति ओम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शान उदित नारायण श्रेया घोषाल समिति चौहान और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल थे विशाल शेखर का संगीत था। संगम फिल्म का गाना है श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजें स्वर्ण विकल के बोल अजय अतुल का संगीत है।

संगम फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं विविध भारती से, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमरीका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडे ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टी हक्कालो नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

0: से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
0: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता

0: much of it comes from that region.
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।

0: संवाद हमारे साधन मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से

0: मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमरीका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर है। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने पलटा विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। वे हमारे संवाददाता से
1: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित

0: कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बैंड का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: हाउसिंग सेंसर यानी आपके मकान के कमरे होंगे। आइए आपके साथ हमारे से सशक्त हो जाए और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाए।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। F-TAC 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या F-TAC.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक

बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक सीबीएसई की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने सीबीएसई को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यूपीएससी ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए यूपीएससी टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय त्विषा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए। इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारों में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी

ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।

0: विभाग ने दतिया निवाड़ी सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर जबलपुर उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM कोर्स से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बे को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखने में आओ मुझसे मुखातब होकर बोले, अजी आप भी कोई बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई, डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया। कहने लगे बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

दोस्तों नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम आज समर्पित है जाने माने शायर और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को। दीवाना।

गुजरी सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत

सन 1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार A.R. कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे KLC।

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरूह सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

जैसे मधु सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एस डी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपनी बोल खोली।

अली बर्मन के संगीत में भी मजरों के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

उन्होंने मजरू साहब के उल्लेखनीय योगदान के लिए 1993 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।

2024 में सन 2000 को निमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजनू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: सब बहुत बार मिल रहे हैं। वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही है हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस में तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना गर्मी की वजह से, और आप रिलैक्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमीडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमीडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब

0: पांच ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपनी बॉडी को हाइड्रेट करिए, स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो जो लिक्विड हो अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लो जाना चाहिए, किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए। और
1: ये आकाशवाणी है, रवि वासरी अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार है पंडित हौरु शंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाले विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हौरु शंकर भट्टाचार्य के दादा श्री मानमोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस संगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हौरु शंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हौरु शंकर भट्टाचार्य उस समय के बंबई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहाँ बेंतार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रथम सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हौरु शंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी है। पंडित हौरु शंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार है। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हौरु शंकर भट्टाचार्य के साथ तबली प्रसंगित करेंगे प्रशांत दे राय।
2: अखिल भारतीय संगीत सभा चुनाव वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय पंडित हौरु शंकर भट्टाचार्य, वन इन अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली ऑफ अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियंस वर हिज ग्रैंडफादर द रेनाउंड सितारिया श्री मानमोहन भट्टाचार्य इज सेट टू हैव लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस रिच लेगेसी एंड पंडित हौरु शंकर भट्टाचार्य स्टेपिंग इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक विथ इनिशियल ट्रेनिंग अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ हिज फादर श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य। Further, he also received training from Sri Muralidas Thakur of the Bishnupur Gharana. Later, in 1968, Pandit Hauru Shankar Bhattacharya moved to Bombay, present day Mumbai, to undergo intensive training under the legendary sitar maestro, Padma Bhushan Ustad Abdul Halim Zafar Khan of the Indore Gharana, famous for his Benkar style. A top great sitar artist of Akashvani and Doordarshan, Pandit Hauru Shankar Bhattacharya, with his unique artistic identity as a Jafar Khani Baj, has performed extensively at major classical music concerts and festivals across India and abroad. An embattled artist of the Indian Council for Cultural Relations, Pandit Hauru Shankar Bhattacharya has received several awards and accolades and has also contributed as a music director for Apna Utsav, a festival organized by the government of West Bengal. In tonight's presentation, Pandit Hauru Shankar Bhattacharya is accompanied on the tabla by Prashanta De Roy.
1: पंडित हौरु शंकर भट्टाचार्य सितार वादन की इस प्रस्तुति का आरंभ राग दरबारी के साथ करेंगे। यह बंदिश आलाप और जोड़ के साथ शुरू होगी, जो गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात मध्य लय तीन ताल में आबद्ध है।
2: पंडित हौरु शंकर भट्टाचार्य स्टार्ट्स हिज सितार रिसाइटल विद राग दरबारी, बिगिनिंग विद आलाप एंड जोड़। द कंपोजिशन ऑफ द राग is set to gut in the tintal, followed by Madhya

0: शिकार मादन के अंतर्गत आप पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य से राज दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राज छायानत, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात ग्रुप तीन ताल में आवृत्त है।
1: You are listening to Raj Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues with his presentation in Raj Chayanat, which begins in alap with a composition 6 to 1 in lambit and 3 in

0: रावण के उपचार सुनने आप राग जागृत सुन रहे थे। पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग विनय काशी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में बीच संधि तत्पश्चात ग्रुप तीन ताल में आवृत है।
1: Shankar Bhattacharya concludes his presentation with Rag Vina Kafi. Beginning with Alap, the composition of the Rag is set to Gat in Deep Chandi

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित रविशंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबली पर संगत कर रहे थे प्रशांत जी राय। इसी के साथ रविवार अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: अखिल भारतीय संगीत सभा। This program was recorded at the studio.

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मैं दिव्य 366.3 मीटर
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी।

0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली है।
0: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमरीका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत

0: Ustedes lugares de serie de producción, llamadas de sexo, de la de fecha. Es que yo creo que habrá un momento de tiempo. No tenía que dos o tres paredes que están tan
1: अमरीका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने पलटा विधानसभा सीट जीती है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीताराम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंदर हराया, जिन्हें 40,643 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि यह फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का स्वतंत्रपूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 82 शहरों में 2,000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8,00,000 से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग स्लीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Death.